0: लग गए 440 वोल्ट छूने से दर लग गए 440 वोल्ट छूने से दर
1: हदि गे सेनि आर्कदाशलारिनला तानिष्टिरायिम. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte

0: के नीचे टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे आके मीचे आके मीचे आके मीचे आके मीचे आके मीचे
1: स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है बेबी को बेस पसंद है।